गोविंद सिंह तो सिखो। चमकौर की गड़ी है, दोनों पुत्र शहीद ने, जे पुत्र की लाश के कोलो निकलते ने, कदी नहीं चमकौर की गड़ी विच किते भी नहीं गुरु गोविंद सिंह ने कहा मैं जालम राज की जड़ पट्टी। असी शब्द वरतने हैं, मैं तुरकां की जड़ पड़ दिती। मैं अर्ज की सी शब्द तुरक नहीं, शब्द जालम है। आखिर गनी खां ते नबी खां भी तुरक ने, जेड़ा मंजा चुकते पे ने जान ते खेड़ के। पीर बुद्धू शाह भी नमाजी है, तीखण शाह भी नमाजी है, मलेर कोटलिया भी होवे तुरक भी नहीं। हुण उधर खबर पहुंची, वड्डे साहिबजादे शहीद ने गुरु गोबिंद सिंह बिलकुल नहीं कहिंदे पे कि मैं जालम की जड़ पड़ दिती। ये कहिंदे पे ने कोई नहीं कि जंग हुई, आपस विच लड़ के शहीद होए, पर जदो छोटियां भी खबर मिली ते गुरु गोबिंद सिंह ने काही दा बूटा पड़ दिता। ए क्यों पहला क्यों नहीं पटिया? क्योंकि पहला पुत्र लड़ते शहीद होए ने, जे दो तीर वजे ने ते चार किसे नू मारे भी ने, जे एक गोली सीने विच लगी है ते दो किसी दे छाती विच ठंडियां भी कीतियां ने। इस करके काही दा बूटा पटिया। पुत्र भावे गुरु गोबिंद सिंह दा होवे ते पुत्र भावे किसे मुसलमान दा होवे, जदों मजलूम ते जुल्म होवेगा उदों उस राज दीआं जड़ां जरूर पट्टियां जाणगीआं, क्योंकि बेदोशे ने, वह मजलूम ने, उन्हां ने हाथ नहीं चुकिया, उन्हां ने बंदूक नहीं पकड़ी। जदों काही दा बूटा पट्टण लगे ने, सिखां ने चरण पकड़ लै ते लिखदा पूरन सिंह साहिब कहिंदा रोवो ना, सतगुरु कहिंदे ने सिखो रोवो ना, मेरे पुत्र मरे नहीं। पुछया दाता क्यों, ते गंभीर आवाज विच पढ़ देने कबीर संत मुए क्या रोईए, जो अपने ग्रह जाए रोवो साकत बापड़े जो हाटे हाट बकाए। रोवो ना सह पंड कहिंदे ने गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, कहन लगे रोवो ना सजनो गुरमुख लाह लै गए, मनमुख चले मूल गवाए। इथे हजूर दे चरण पकड़े साहब ने काई दा बूटा पट के क्या लैओ राय कला, अज मैं जालम राज दी जड़ पड़ दिती। इथे कवि ने बड़े कमाल दी गल कही, ओ कहिंदा गुरु गोबिंद सिंह जदो इन्हां दे चरण पकड़े ने सिखा ने, रो रो के साहब दे चरण धो दिते, ते राय कला कहिंदा पातशाह, दया सिंह कहिंदा सच्चे पातशाह अगा कुछ नहीं कह सकिया। ओ कवि कहिंदा साहब कहिंदे ने दया सिंह पातशाह ना कहे। पुछया क्यों, कहन लगे पातशाह तां ओ वे जेड़ा सब कुछ इको वारी सौंप देवे। सजना उथे उन्हें चार पंक्तियां कहियां दर्दनाक, कह लगे भाई दया सिंह जी ढहिंदे देश दा जदो सहारा नहीं सी, उदो पिता मैं इस देश तो वारिया, मैं माता गुजरी बिच सरहंद गुजरी, समा गुजरिया जिवें गुजारिया, मैं चार पुत्र सन बख्शे परमात्मा ने, ओ भी जोड़ा जोड़ा करके वारिया, मैं मत कहो सिखो मेनू शहनशाह किश्ता नाल तां कर्ज उतारिया। मैं उस मालिक दा शुक्र पिया करना वा, साहिबजादियां दी शहादत होई, जालम राज दी जड़ पट्टी। औरंगजेब नू जफरनामा लिखिया ते लिखदे पए ने औरंगजेब मत घबरा, मेरे चार पुत्र को के मार दिते, अजे खालसा बैठा है किन्ने को के मारेगा। प्यारियो इसे धरती ते राय कल्ले ने चरण पकड़ के क्या सी दाता मुसलमान ता मैं भी हां। साहब ने असीस दिती राय कल्ला, आ कृपान मेरी सांभ के रखी, जिन्नी देर तक सत्कार करेगा तेनू किसे चीज की कमी नहीं, तेरे कर घाटा नहीं रहना। बेदबी ना करी। कवि संतोख सिंह कहिंदे ने उहने अदब कीता, उहदे पुत्र ने अदब कीता, ते कवि जी कहिंदे ने जदों असी छोटे सां उहदे पोतरे ने बेदबी कीती, पर पोते ने ते उसे कृपान दे नाल उहदी मौत हो गई सी। ओ श्री साहब गुरुद्वारा सिरपाओ साहब नाभे विखे पई है। खैर गुरु गोबिंद सिंह जी दे पुत्र साहिबजादे शहीद हो गए ने, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जे जफरनामा लिखदे ने तां वी ओ चढ़दी कला दे अंदर, ते अज उहनां बाबिआं नूं असीं याद पै करने आ। जेहड़ी मैं अर्ज करनी चाहना वा गुरु के प्यारिओ, कदी उहनां दे जीवन नूं तको, ओ खलो के एक आवाज कहिंदे ने सरहंद अंदर कि असीं चार नहीं असी हजार हां, ते करम सिंह हिस्टोरियन लिखदे ने सिखा ने एक दृढ़ इरादा कर लिया कि ओनी देर तक चैन नाल नहीं बहना जिन्नी देर तक असी सरहंद नूं गर्क नहीं कर देंदे। करम सिंह हिस्टोरियन ने कुछ कु उदाहरणां दित्तियां ने, इस शहादत ने रंग ही लियांदा है। बाबा बंदा सिंह बहादुर दखण तो आए ने ते अमृत दी दात दे के तोरिया, ते एक गल कही सी गुरबख्श सिंह चलना तू सरहंद भी पहुंचना है, पर सरहंद तो

0: कि साडा बापू तां सानू कपड़े दिंदा है, रब ने कभी कपड़े सवा के दिते ने? साडा बापू तां अनाज लिआउंदा है, कई तरह के फल लिआउंदा है। तू कहनी राम देण वाला है, रब देण वाला है, खुदा देण वाला है। असी नहीं देखा किसी दे घर अंदर खुदा ये वस्तुआं लेके आवे।
1: एम सुन के कन्या लर परी, जाए पिता के टेक सुद करी।
0: इन्हने आपस विच गल कर दिया ओ इन्नी कु दृढ़ इरादे वाली है, कहन लगी तर्क ना करो, विश्वास करो कि रिजक देण वाला वाहिगुरु है, जिन्हें शरीर दिता है ओदे बचना ते भरोसा कर लवो। शायद यही कारण कई वरी मनुख उस रब की दिती हुई दात नू लेके असल विच मैं मेरा ढंग अपने इतिहास की विचार करन दा, जदों इतिहास की पंक्ति उत्ते गुरु की बाणी की मोर लग जाए ना ते गल पक्की हो जाती। शायद ने बाणी विच असल विच बच्चियां दे ख्याल नहीं, हर एक नास्तक मनुख की बिरती है कि रब वस्त्र देंदा है, रब सानू रिजक देंदा है, रब की साडा करन वाला है। ते मेरे साहब ने बाणी विच क्या कहन लगे, नहीं होए जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दिती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजै पवन आखै सब जाए। मेरा गुरु ग्रंथ साहब कहिंदा रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अग्न में जिन्हें उभारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर साठ सैन, मुख अपियाओ बैठ को देन। इन्ना कुछ लैके भी कहना कौन देन वाला है? ते मेरा गुरु अर्जन देव कहिंदा दातिया ए निर्गुण, ए तेरे गुणा नू नहीं समझदा, ए निर्गुण गुण कशु ना बूझै, बख्श ले हो तो नानक सीजै। देन वाला ओ रिजक वाहिगुरु वे, साहब ने बाणी विच इशारे कीते, इस पानी ते जिन तू करिया, माटी काले द्योरा करिया, उकत सुरत लै जोत परीख्या, मात गर्भ में जिन तू राख्या। साहब ने बाणी विच कहा मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तैं तुम राखण हारे, पावक सागर अथात लहर में तारो तारण हारे। साहब ने बाणी विच कहा माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है एवड दाता, जे अग्न में आहार पहुंचावे। साहब ने बाणी विच क्या और की बात कहां कह तो सो, पेट ही के पट बीच बचावे। और रिजक देन वाला एक ही लड़ पईआं ते अगो कहिंदी देखो जिन्निया मर्जी दलीलां दे लो पर मेरे ते असर नहीं, मैं गुरमुखां तो एक बचन सुनिया है कि देन वाला वाहिगुरु है, कोई किसी नु रिजक नहीं देंदा।
1: हम सब कहे पिता ते खावत, एक इस बात अपर बिदतावत।
0: इन्होंने लड़दिया लड़दिया ए आणियां उठ पईआं ते बापू दे कोल घर गईआं ते पिता बैठा सी अपने मंजे ते, ए बिचारी भी पिछे पिछे तुर पई। चारा जनिया ने जाके पिता नु घेर लिया ते कहन लगियां पिता जी देखो आ किहो जियां गल्लां करदी पई है, असी बैठियां सा अज इकट्ठियां ते गल चल पई कि साडा बापू सानू रिजक देंदा है, साडा पिता सानू बस्तर देंदा है, ते ए अगो होर तर करदी है।
1: जो प्रतपारे देत हमेश, लगतं ते जिन कीन विशेष।
0: कहन लगे ए तां गल्लां होर करदी है, आखदी है रिजक देण वाला कोई होर है, जिहड़े साडे छोटे जे तन नू संभाल के रखे है ते जिदी कृपा नाल तन वड्डा हो रहा है।
1: सुख सो शुभ आहार हम करही, किसु बाद की चिंतना तरही।
0: कहन लगे असी फिर दलील दित्ती के नहीं, साडी प्रतपालना साडा बाप कर दे, सुख नाल असी आहार करनिया वा, सानू किते रोटी दी चिंता नहीं।
1: ए ने माने मत कह न्यारो, हम सब कहे कीन्स निर्धारो।
0: कह लगी देखो असी सारिया ने इको ही ए आपस विच विचार कीती है के देण वाला साडा पिता है, पर एदा ता मत न्यारा है, साडी हां विच हां नहीं मिलांदी।
1: सुनत निरपत पित मूर्ख रोसा, नहीं सिर को लख्यो भरोसा।
0: कहिंदे ने कवि जी उको राजा भी मूर्ख है, ओनू ए समझ नहीं जेड़िया ए चार कहिंदियां ने ए अनजान ने, जेड़ी एक कहिंदी पई ओ सच कहिंदी पई। कहन लगे आपस विच ए मूर्ख बंदा जिनू समझ नहीं, एक वाहिगुरु ते भरोसा नहीं।
1: अपने राजमान में फूला, प्रकृत कूल पे।

इस अहंकारी बाप ने यह कह दिता कि मैं तेनू एक कोड़ी दे लड़ लावांगा जिस दे हाथ पैर उंगलियां भी झड़दियां पईआं ने, तू ऐसे जींदे जी नरक भोगेंगी क्योंकि मेरे हाथ विच बहुत कुछ है। ते उस बच्ची ने अपने पिता की आग्ञा नूं सत करके अपने

0: दरवाजे का गुलाम बना नहीं, किसे दे दरवाजे अगे झोली अटन लई मजबूर करना ही। ते मैं कहना ऐ खुदा, किसे दी गुलामी कबूलन तो पहला मेरी जिंद नू मेरे शरीर तो स्वतंत्र कर दई, क्योंकि मैं किसे दे दरबार विच गुलामी दे दिन नहीं कर सकता। बाबे फरीद वर्गे महापुरुष ने बाणी विच कह दिता, फरीदा बार पराए बैठना साई मुझे ना दे, जे तू एवें रखसी जीओ शरीरों ले, मेरे शरीर विचो जिंद नू कर ली। ते जिस महाराजे दा जिक्र आपा कर लगे हैं, मैं कोशिश करांगा ओदे जीवन विचो पंछी झात आपा निकलिए। गुरु गोबिंद सिंह जी दे दरबार विच आनंदपुर साहब दी धरती ते एक मनुख आए। मैं साहब दे दशमेश दे जीवन नाल एदे जीवन नू आरंभ करना, इस खानदान दे जीवन नू। सतगुरु दे दरबार विच एक मनुख आए ते साहब ने जदों अमृत दी दात दिती ते इस नौजवान ने खलो के कहा सी, दातिया अमृत दी दात मेनू भी दे। सिख विद्वान लिख दे ने कि उस मनुख दा नाम सी बुढ़ा मल, ते इन्हे हाथ जोड़ के कलगी वाले दे चरना विच खलो अमृत दी जाचना कीती। ते जदो साहब ने अमृत दी दात दिती ते एदा नाम रखिया गया सी बुद्ध सिंह। गुरुदेव पिता तो अमृत दी दात लई नाम बुद्ध सिंह रखिया। बाबा प्रेम सिंह होती लिख दे ने, इसने इना कु जालमा नल टक्कर लई, एदे शरीर उत्ते 40 निशान सन गोलियां दे नेजियां दे करबाना दे तीरां दे। बुद्ध सिंह दे तन ते 40 निशान ने। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जिक्र करदा है, एदे तन ते 43 निशान ने। गल मुकदी की ओदे तन ते 40 निशान ने, दुश्मना नल टक्कर लैंदिया सारा शरीर विन्या पिया है। सिख विद्वान कहिंदे ने बुद्ध सिंह दी एक घोड़ी सी जिदा नाम देसा सी, इस करके एदा नाम नाल ही इना जुड़ गया सी। असवारी करन वाले दा ते असवारी दा नाम इना कोई एकमिक हो गया, इनू देसा बुद्ध सिंह कहन लग पए सन। देसा बुद्ध सिंह अपनी घोड़ी दे पिछ ते सिख विद्वाना मुताबक 50 वरी इन्हे जेलम ते चना नू आर पार कीता सी। बुद्ध सिंह इन्हे जदों गुरुदेव तो अमृत दी दात लई, एदे कर फिर दो पुत्र पैदा होए। एक दा नाम सी नोद सिंह ते दूजे दा नाम सी चंदा सिंह। चंदा सिंह सरदार जेड़ा ए संधा वालियां घराने दा मोढ़ी होए। नोद सिंह जेड़ा इन्हे गुजरां वाले दे नेड़े अपने बाप दी मौत तो बाद गुजरां वाले दे नेड़े एक शुकर चक थे बिछाया। इसने पहला 30 नौजवान सिख अपने नाल जथे विच रलाए ने। इन्हे शुकर चक थे बिछाया, जे सच पुछो ओ शुकर चकिया मिसल दा ओदन मूल सी। ते शुकर चकिया मिसल दे नाल नाल इउं समझ लो कि सिख राज दी पहली नी ओदन रखी गई सी। 30 बंदे बाबा नोद सिंह ने, इस नोद सिंह सरदार ने भर्ती कीते। नोद सिंह तो बाद एदे घर दे अंदर 4 पुत्रां ने जन्म लिया, चरत सिंह, चेत सिंह, माकी सिंह आदिक। नोद सिंह दी मौत हुई ते एदे पुत्र चरत सिंह ने सुकर चकिया मिसल दी कमांड नू सांभिया। मैं रणजीत सिंह जी दे पिछोकड़ दी अर्ज कर रहा, चरत सिंह जिदन मिसल दा आगू बने ओदन ने एक नेम बना दिता सी, जिन्हें साडी मिसल भी सामने होना है ओनू कलगी वाले दे दर दा अमृत पान करना पेगा। ते जदों कोई नवा सिपाही भर्ती करदा सी उदो चरत सिंह आप 5 प्यारियां भी शामिल होके ओनू अमृत दी दात दिंदा हुंदा सी। मिसल विच सिपाही भर्ती तां करना पहला इन्हे अमृत दी दात देनी। जदो चरत सिंह दा जीवन आया उदो मिसलां राजभाग कैम पईयां कर दियां ने। इधर अबदाली ने हमला कीता, कुपर खेड़े दे मैदान विच इन्हे हजारां सिख कोह के खत्म कीते ने। बुझे बुढ़े बच्चे अनेकां जेड़े गभरू ने उन्हां नू इन्हे शहीद कर दिता। ते इसी कुपर खेड़े दे मैदान विच सरदार चरत सिंह ने वंगार के एक गल कही सी, अबदाली लोकां दे पुत्र मरवाना पे, जे तेरियां बाहां विच दम है तू मेरे सामने आके मेरे नाल टक्कर लै लै। इत्थे चरत सिंह ने वंगारिया सी। चरत सिंह तो बाद एदे घर एदा पुत्र महा सिंह ते सोज सिंह दो पुत्र होए। चरत सिंह तो बाद महा सिंह ने सुकर चकिया मिसल दी अगवाई कीती है। महा सिंह जेड़ा एदा दिन दिन प्रताप वधदा गया, इथो तक के राणी सदा कौर जेड़ी है उन्हें भी एदे नाल सांझ पाई। मैं अर्ज करा सरदार मां सिंह का जिहड़ा रिश्ता है जींद का राजा होया गजपत सिंह ओदी बच्ची राज कौर मलवैन दे नाल मां सिंह की शादी हुई ते चेते रखना मां सिंह ओ भागां वाली घड़ी आई गुजरां वाले दी धरती है कुछ बडरुखां दा जिक्र करदे ने गुजरां वाले दी धरती है 2 नवंबर 1780 आया है उस दिन एक बालक दा जन्म होया है राज कौर दी कुख विचों मां सिंह दे घर अंदर ते उस बालक दा नाम रखिया गया सी रणजीत सिंह इहदा पिछोकड़ रणजीत सिंह दा जन्म होया है बाप ने खुशियां मनाईया ने अजे थोड़ी जी उम्र दा होया ते रणजीत सिंह नू चेचक ने दब लिया है किन्ने एदे बचन दी कोई उम्मीद नहीं सी एदी खब्बी अख सदा वास्ते बंद हो गई ते वेखण वाले सोचदे सन पता नहीं इस बच्चे ने बचना के नहीं पर सिख विद्वान लिखदा है नहीं दुनिया दे लोको जदों ओदी एक अख सदा ली चली गई ओदा शरीर बिलकुल कमजोर हो गया पर खूनी हस के कहिंदी सी जिस बच्चे नू तुसी कमजोर कहिंदे हो इन्हें कदी गुरु नानक दे नाम दे सिक्के चलाने ने इन्हें धरती पंजाब दी महाराजा बनने इनू शेरे पताब पंजाब दा खिताब दिता जाने इन्हें ता कई सदियां दे जालमाल महमलावरा दे दंद खट्टे करके पिछा नू मोड़ देना रणजीत सिंह कुछ समय तो बाद वल होया जिदन मां सिंह दी उम्र 27 साल दी होई ते इधर रणजीत सिंह जेड़ा एदी उम्र 9 कु साल दे करीब होई 9 साल दी उम्र विच रणजीत सिंह अपने बापू नाल मुहिम उत्ते जान लग पिया सी सिख विद्वान लिखदे ने इधर राणी सदा कौर होई है कन्हैया मिसल दी ओदे मालक नू भावां के मां सिंह ने मारिया जदों ने देखिया के मां सिंह दी ताकत वधदी पई है उन्हें उसे वक्त सारे वैर विरोध भुला के अपनी धी महताब कौर का रिश्ता रणजीत सिंह दे नाल कर दिता मां सिंह अजे जिउंदा है किन्ने जदों इहदा रिश्ता होया ते सरदार मां सिंह गया गुजरात भावां के ए आपसी लड़ाई मिसलां दी सी रणजीत सिंह भी उत्थे पहुंचिया ते रणजीत सिंह अपने बापू नाले मां सिंह उस मौसम विच खाना चंगा ना मिलन करके बीमार हो गया ते इन्ना कु बीमार होया इहदा शरीर बिलकुल रह गया इंज भासिया के जिवें मौत बिलकुल नेड़े पई आउंदी ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਏ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਕੇ ਹੱਥੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੈਰ ਵਧਾਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੰਨ 1801 ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ 3 ਹਾਕਮ ਨੇ ਭਾਵਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਨ 1801 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 1801 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਏ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਣਾ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰੱਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਆਰ ਬਲਾ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਦਣ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਏ ਗਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨਨ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੇਈ ਜਿਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਕਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਰਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਪੈਸਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦ ਰੰਗ ਜਾਪਤ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਕੁਝ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਕਰੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੈਂਪ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੋਹਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਕਰੇ ਗਏ ਉਹ ਸਨ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦ ਰੰਗ ਜਾਪਤ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੋਹਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਹਾਏ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਮੋਹਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਿੱਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਲਾਇਆ, ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰਤ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਆ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਚੁਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, 1800 ਤੇ 1822 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਬੰਤੂਰਾ ਆ ਕੇ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਨਰਲ ਬੰਤੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, पांच शर्तां ने मेरियां, जे तेनू परवाने ता मेरी फौज विच भर्ती हो सकना, नहीं ते नहीं। बाबा प्रेम सिंह होती ने पंजां शर्तां दा जिक्र कीता है। पहली शर्त ए, सिख फौज विच तुसी भर्ती होवो, कदी समा बने सिख हकूमत नू किसे यूरप दी हकूमत नाल लड़ना पाए। इथे पहला शर्त एवे लिख के दियो कि उदन असी सिख राज दे शुभ चिंतक बन के सिख राज वालों लड़ांगे, ना के यूरप वालों, सिख राज वालों लड़ना पाएगा। दूजी शर्त के खालसा राज लाहौर दरबार दी आग्या तो बिना तुसी यूरप दे किसे हाकम दे नाल चिट्ठी पत्र नहीं कर सकते। तीजी शर्त ए कि तुहानू दाढ़ी साबित रखनी पाएगी। चेते रखना ए उस पूरियां शर्तां विच लिखिया, अज भी मिलदा, पढ़ सकने आ। तीसरी गल दाढ़ी साबित रखनी पाएगी। तीजी गल, चौथी गां दा मांस नहीं खाना। ते पंजवीं गल जिहड़ी वी शर्त विच लिखी गई कि मेरी फौज विच खालसा फौज भी शामिल होके तंबाकू दा सेवन नहीं करना। इथे कहिंदे ने जरना ने एक गल कही सी, महाराजा तेरियां चार शर्तां तां अज ही परवान ने, केस रख लांगे साबित सुतरी, दाढ़ी असी रखांगे, सुची दाढ़ी शब्द सी, दाढ़ी सुची रखांगे। दूजी गल, अपनी मर्जी नाल किसे नू चिट्ठी पत्र नहीं करांगे। जिदन समा बढ़िया खालसा राज दी खातर यूरोप दे विरुद्ध भी लड़ांगे। चौथी गल, गां दा मांस नहीं खांगे। ते जिहड़ा पंजवां तू कहना तंबाकू, कुछ दिन सानू रैत दे दे, असी तंबाकू पियांगे पर घट कर देंगे। रणजीत सिंह ने एक गल कही, कोई जरूरी नहीं तुसी पहला छड के आओ, जिदन छड के आ जाओगे उदन भर्ती कर लांगे। कहिंदे ने उसे वक्त उन्हां कहा, परवाने अज तो बाद तंबाकू दा सेवन भी नहीं करांगे। उस रणजीत सिंह दे धार्मिक जीवन नू मैं आप नाल सांझा करना चाहना वा। उहदे जीवन दीआं कुछ घटनावां सिखां ने सांभ के रखियां ने। इधर वह सिख राजा बणिआ ते जदों 1803 आया ते अमृतसर दी धरती रामगढ़िया मिसल ते भंगी मिसल दे अधीन सी। इन्हां ने सोचिआ रणजीत सिंह ने कब्जा लाहौर कर लिया, आपां इकट्ठे हो के हमला करिए कि रणजीत सिंह नूं आपां एक वारी दबा दईए। इह खबर रणजीत सिंह कोल पहुंची, हालांकि वह महाराजा बन चुका है। वह अमृतसर दी धरती ते फौज लैके आया ते जदों अमृतसर दे नेड़े पहुंचिआ इहदीआं अखां भर आईआं। कहिंदा, गुरू रामदास, इह किहों जिहा दिन मेरे सामने आउंदा पिआ है। तेरी वह धरती जिथे अमृत दी शहबर लगदी है, उथे अज एक भरा दूजे भरा ते तोपां दे गोले वराएगा। कोई एहो जी किरपा कर दे, कोई सुखैन रस्ता निकल आवे। नाल इहने तोपचियां नूं कह दिता, जे गोले दागणे ने फोके फैर करो, केवल दबके मारन दे लई अमृतसर वल नूं करके कोई गोला ना दागिया जे। कहिंदे ने उधर भंगियां ने तोपां बीड़ियां ते जदों लड़ाई पूरे जोबण ते होण लगी है ते उस वक्त सिख कौम दा मरजीवड़ा जरनैल आया, अकाली फूला सिंह। देखो ओदा अदब, ओ पक्षपाती नहीं सी, ओ इको गल चाहुंदा सी कि खालसे राज दे झंडे चुलण। विच आके खलो गया, कहन लगा, एक दूजे ते गोला चलाण तो पहला जे तुसी मैनू गोले नाल विन दिओ ते चंगी गल है, मैं अपने हुंदिआं अमृतसर दी धरती ते सिख सिख ते गोली चलाए, ए मेरे तो सहा नहीं जाणा, मेनू गोले नाल अड़ा दिओ। दोनों धिरां ने कह दिता, बाबा जी जो कोई तुसी करोगे सानू परवाह ने। उस वक्त फिर उन्हें एक गल कही, रणजीत सिंह, अमृतसर दी धरती ते कब्जा तेरा, रामगढ़िया ते भंगी मिसल नू कह दिता कि तुहानू जगीर दिती जाएगी। रणजीत सिंह ने कहा, हां मैं जगीर भी दियांगा। उस वक्त रणजीत सिंह अमृतसर विच प्रवेश करदा है, हरिमंदर साहब इशनान कीता है, ने सरोवर अंदर नमस्कार कीती ते अखां भर आईआं। कहन लगा, गुरु रामदास, तू उदन ए बचन कहे सन जिदन तैनू गद्दी मिली सी कि जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम्हार जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केहरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, दातिया मैं अनपढ़ जिहा बंदा एक छोटी जी मिसल विच उठिया, अज जो कुछ झोली विच पाई तेरी किरपा दे नाल मिलिया, बख्शिश करी ए सिदक अखीरले समय तक ने बजाए। शेरे पंजाब अमृतसर दी धरती विच फिर इन्हें एक बाग लवाया, उस बाग का नाम रखिया राम बाग। गुरु रामदास जी दे नां ते शेरे पंजाब दियां धार्मिक झाकियां मैं कुछ आप नाल पेश करनिया ने। जदों इन्हें लाहौर कीता राज कैम इहदे बाहूबल नूं कदी तको अब्दाली दा पोतरा शाहजमान ओ किले विच बैठा है ते बैठा अपने आदमियां विच कहिंदा सिख मेरे नाल लड़नगे। कहिंदा मेरे ते घोड़े दियां टापां सुन के सिख पंजाब दी धरती तो छड़ के पंजाब नूं दूर चले जांदे ने। किसे ने रणजीत सिंह नूं कहा रणजीत सिंह महाराजा बन तो पहला दी घटना है। अब्दाली दा पोतरा कहिंदा सी सिख मेरे घोड़े दियां टापां सुन के डरदे मारे दौड़ जांदे ने। 30 घोड़ असवार नाल लै अपनी सत सदा कौर नूं इन्हे नाल लिया ते लाहौर दे किले सामने उच्ची आवाज विच गोली चला के गल कही सी अब्दाली दे पोतरे मुदतां हो गईयां ने साडी ते तुहाडी टक्कर चलदी पई। कुपरहेड़े दा मैदान सी उदन तेरा दादा सी अब्दाली ते मेरा दादा चरत सिंह सामने सी। उदन अब्दाली नूं मेरे दादे चरत सिंह ने वगारिया तेरे दादे नूं मेरे दादे ने वगारिया। आप दाली दे पोतरे अज चरत सिंह दा पोतरा वगारदा है। जे बाहां विच दम है ते किले दा दरवाजा खोल के मेरे हाथ देख लै। जदों किसे ने इन्नी गल कही अब्दाली दा पोतरा दब गया। परत के उन्हें पंजाब दी धरती वल मुंह नहीं कीता। शेरे पंजाब उन्हें सिख राज कायम जदों कीता सिक्का गुरु नानक दे नाम दा मोर गुरु नानक दे नाम दी। ते जे अज लाहौर ओ अपने लक दुआले पटका बंदा पे है ते राजा ध्यान सिंह कहिंदा है के महाराज तुसी पटका क्यों बंदे हो असी नौकर हां पटका असी अपने लक दुआले बनिए। ते जे विचो सिक्का कढ के कहिंदा ध्यान सिंह ए सिक्के ते नाम किदा है कह लगा गुरु नानक दा। कहिंदा फिर जिदे नाम दा सिक्का चलदा होवे राज उसे दा हुंदा है। मेरा राज नहीं राज ते गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दा है। सजना बस मैं ता एदे दर दा चाकर ते चाकर दा काम है ओ अपने लक दुआले कमर कस्सा करके हमेशा तैयार ओदी भावना नूं कुछ तको कुछ बिरदा दे बयान गुरमुखां ने नोट कीते ने। ओ कहिंदे ने जदों नूं तकने आ सिख राज नूं मैं सिर्फ धार्मिक जीवन वाला पक्ष लै रहा वा ओ जदों राज गद्दी ते विराजमान ने इन्हें एक होका दिता सी कि मेरे राज अंदर कोई ऐसा होवे सिख राज अंदर जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह दे दर्शन किते होन कोई ऐसा होवे। ते किन्ने 126 साल दा एक बजुर्ग मिलिया सी रणजीत सिंह अपने दरबार विच बैठा है। किसे ने आके क्या रणजीत सिंह अज ओ बजुर्ग पिया आउंदा तेरे दरबार विच जिन्हें कलगी वाले दे दीदार किते ने। ते नंगे चरण उठ पिया अगो लैन गया कहन लगा जदो बजुर्ग नू तकिया ओदे चरना ते शीश रख दिता ते अपने नेत्रां विचो नीर दी झड़ी ला के उस बजुर्ग दे चरण धो दिते ते ओदिया अखां नू चुम लिया। कहन लगा बाबा तू किन्ने कु वड्डियां भागां वाला है जिन्हें मेरे सरबंस दानी गुरु दे सामने बह के दीदार किते। जे पुछया तेरा गुजारा किवें में ते अगो एक गल कही पता लगा के बड़ी मुश्किल नाल उसे वक्त हुक्म कर दिता जिन्हें कलगी वाले दे दीदार कीते ने उसे वक्त एदे खानदान दे परिवार दे नाम जगीर ला दिती गई। ओदे जीवन नू कदी पढ़ो अज सिख कुछ पा लिंदा है ते ओ गुरु दरबार नू भी ओ नहीं समझदा। कदी तको खां रणजीत सिंह लाहौर बैठा है ते किसे ने आके इन्नी गल कही रणजीत सिंह तू कहना खालसा जी दा राज है पर गुरु रामदास दे दर दा कीर्तनी है जेड़ा कीर्तन इन्ना भिज के करदा है के लोग सुनदे ने परकर्मा भरिया हुंदिया ने पर सजना ओदी रोटी मिट्टी दे बर्तना विच पकदी है रहिंदा ओ कखां दी कुली विच की करना तेरी इस सल्तनत नूं। उस वक्त हाथी लिया नाल कुछ कु दौलत लै के तुर पिया अमृतसर दी धरती ते पहुंचया अकाल तख्त दे पिछले पास्यों उस कीर्तनीए दे घर पहुंचया। ओदा नाम सी भाई मनसा सिंह। भाई मनसा सिंह ने तकिया दरवाजे बंद कर दिते खिड़कियां बंद कर दितियां। रणजीत सिंह ने हाथी नूं बिठाया आवाज दिती भाई साहब जी मैं तुहाडे दर्शन करन आया वां अपना किवार तां खोलो। ते अंदरों आवाज आई सी रणजीत सिंह मैनू पता है जिस धरती ते तेरे पैर पै जाण लोग तो उस धरती नूं खीरियां नाल जड़ जांदे ने। कहन लगा तू मेरे कोल की लैणा है, मेरे पल्ले की है। कहिंदा मैं तेरे मिट्टी दे भांड्यां दी थां तैनूं सोने दे बर्तन देण आया वां। गुरु रामदास दा कीर्तनी है ते ओ मिट्टी दे बर्तना विच भोजन छके। अंदरों बंद दरवाजे आवाज आई सी, रणजीत सिंह ए मिट्टी दे बर्तन नहीं, ए तेरे सिख राज दी रीढ़ दी हड्डी ने। चेते रखी, जे सिद्ध है राज कैमी, जे गुरु दा भय वे सब कुछ कैमे, मेनू मिट्टी दे बर्तन दे दे, जे कुछ देना है तू राज किदे तो ले आए। कहिंदा गुरु रामदास दे चरणा विचों, फिर कहिंदा एक काम कर दे, मेरे गुरु रामदास दे चरणा विच अरदास कर जा, जिदे दर तू तू राज ले आए। के गुरु रामदास जिन्नी जिंदगी मनसा सिंह नू दित्ती आ, तेरे दर तो बिना किसे दे दर दी चाक ना रखे, मेरी अंतले समय तक निभ जाए। रणजीत सिंह वापस आ गया, भरे दरबार विच अखां भरियां ने, ते जदों किसे ने पुछया ते इको गल कही, कहिंदा तन सिखी, कहिंदा जिन्हां नू मैं चाहना ओ मैनू नहीं चाहंदे, ते जिन्हां नू मैं नहीं चाहंदा ओ मैनू चाहंदे पए ने। ते नाल कहना, कहिंदा इहो जिहा बाबिआं दे सिर ते तां मेरा सिख राज खलोता है। रणजीत सिंह दे सामने एक तस्वीर बनाउण वाला आया, मैं अर्ज कीती मैं सिर्फ धार्मिक पक्ष पेश कर रहा, वैसे ओदा तन ओदी फौज दा प्रबंध ओदा इलाका किन्ने केड़ी केड़ी थां ते उहने केड़े केड़े बंदे नियुक्त कीते, मैं सिर्फ सुखैन तरीके नाल कि ओदे मन विच गुरु ली भावना की है। मूर्तिकार आया, उहने फकीर अजीजुद्दीन नूं कहा कि मैं रणजीत सिंह दी तस्वीर बनानी चाहना वा, ते उस वक्त रणजीत सिंह पहला तां मन्निया नहीं, परत के जे मन्निया, मूर्तिकार चित्रकार सामने गया, कह लगा जे तस्वीर बनानी है ना ते एहो जी तस्वीर बना दे, मेरे गुरु नानक साहब जी बैठे होण ते मैं उना दे चरणा विच मथा टेकदा होवां, मेरा शीश ओदे चरणा विच होवे। ते चित्रकार ने कह दिता रणजीत सिंह तेरा चेहरा फिर दिसना नहीं। रणजीत सिंह कहिंदा मैं चाहना वा कि मेरा चेहरा अलोप हो जाए, इस दुनिया अंदर केवल गुरु नानक दे चेहरे दी गल होवे, मेरा गुरु दिसे ना कि मैं। जे दूजी तस्वीर बनानी आ ते मैं गल विच पल्ला पाना वा ते गुरु कलगी वाले पुत्रां दा धनी बैठा होवे ते मैं झोली अड के ओहदे तो मंगदा होवां दूजी तस्वीर ए बना दे। एक संत निहाल सिंह केसरी होए ने, ओ कहिंदे ने साडा एक शागिर्द शेरे पंजाब दा नफर सी, ओहदा सेवक सी। कहिंदा एक दिन शाम दा वेला है ते रणजीत सिंह रहराज साहिब दा पाठ करदा पे, ओहदा नेम सी जिहड़ा ओहदा नित दा नेम सी अमृत वेले उठना, ओहनू हर बंदे नू गल कहण दा अधिकार सी। एक सेवापंथी महापुरश होए ने, थोड़ा जिहा मैं खिंड चलां विचों गल फिर उत्थे लै के आवांगा, दुख भंजन जी ओहना दा नाम होए, रणजीत सिंह ओहना दे दर्शन करन ओहना दे डेरे गया, बड़े प्यार नाल उन्हां नूं मिलिया ते बाबा दुख भंजन ने पुछ लिया कौन, कहन लगे शेरे पंजाब आए। बाबा दुख भंजन जी कोल आए, पुछया राज भाग, हाथी घोड़ियां दी गिनती दस दिती, फौजां दी गिनती दस दिती, अपने इलाके दे गज गज थां दा उन्हें जिक्र कीता। ते बाबा जी ने अचनचेत पुछ लिया रणजीत सिंह जपजी साहब चेते ही नीवी पा ली, कहन लगे जपजी साहब कंठी, कहन लगा नहीं, किन्ने तेनू घोड़े चेते हाथी चेते राज भाग दी एक एक वस्तु चेते वे, काहे के तुम सिखो, उन्हां शब्द वरत्या, अरे काहे के तुम सिखो, सिखो के जपजी भी कंठ नहीं किया। ते उत्थे कवि संतोख सिंह दियां तुकां ढुकदियां ने, सिख गुरु का होए गयो जपजी कंठ ना कीन, तंदुल बिन तो काम किस जन्म अकारथ कीन, कहन लगे जिवें दाने तो बिना उपर वाले छिलके दी कोई कीमत नहीं, की कीमत रणजीत सिंह तेरी। बस ऐसी ठोकर लगी, बाणी बेअंत कंठ कीती, नेम बन गया कि अमृत वेले नितनेम करना, गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ सुनना, ते दरबार भी जान तो पहला गुरु कलगी वाले दी उस कलगी नूं अपने अखां ते लाना, उस कलगी नूं चुमना। ते ओ लिखदे ने संत निहाल सिंह केसरी कि साडा एक चेला सी, ओहदा डफर सी सेवक सी, किन्ने शामा दा वेला ते एक दिन रणजीत सिंह अमृतसर दी धरती वल नूं लाहौर मुंह करके बैठा अमृतसर दी धरती नूं, कहिंदा ओ नफर पिछे खलोता, उन्हें पाठ किया पहला ते परत के अरदास भी जुड़ गया, कहिंदा ओदा दाड़ा सारा नेत्रां दे नीर नाल भरिया, ते नाले कहिंदा पिया सी सतगुरु मैं अनपढ़ जिहा वां ना, शरीर भी मेरा कमजोर जिहा है, निम्रता दे शब्द ने, मेरा कद काठ भी चंगा नहीं, मैनू समझ भी कोई नहीं, एक कृपा कर दे मेरे गुरु रामदास जेड़ी अपनी सिख कौम की सेवा बख्शी आ, इस कूकर नू निवाज के बड़ी कृपा नाल अपनी बख्शिश दे नाल ए मेरे तो सेवा ले ले। कहिंदा मैं खुद तकिया इकल्या ओनू अरदास करदिया नू, ते जे अज ओदे दर ते कारीगर आए ने कि रणजीत सिंह तेरे वास्ते एक कुर्सी बनानी है, ते रणजीत सिंह कारीगर नू भी कह दिंदा सजना कुर्सी बेशक बना पर मैं लाहौर दी धरती ते बैठा होवां, ते कुर्सी दा जेड़ा इको दम मुंह बैठदिया सार अमृतसर दी धरती वल हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता जिदी कृपा नाल राज भाग लिया कुर्सी ते बैठ के ओदे वल पिट कर लवां। ओदे जीवन दे पक्ष बेअंत ने, जे धार्मिक जीवन तक ने, उदन मैं अर्ज कीती सी चानी आउंदी है हाज हैदराबाद दा निजाम लैके आउंदा है, ते उस वक्त उस नवाब दी चाननी सिर ते लगदी है, ते उतरवा के कहिंदा नहीं लै जाओ मेरे गुरु रामदास दे घर अंदर, मेरे सिर ते नहीं गुरु रामदास दे शीश ते चंगी लगदी है, चाननी लै के आउंदा है, ते पुजारी कहिंदे ने रणजीत सिंह जेड़ी चाननी एक वारी मनुख दे सिर ते लग जाए, ओ किसे मनुख दे सिर ते लगी चाननी गुरु दे दर ते नहीं। कहन लगा प्रवान करो अकाल तख्त तेनू दो पिंड तनखा लाई गई, एक पनौड़ी पिंड जिला कांगड़ा ते गुरदासपुर दा नारायणपुर पिंड, ए दो पिंड ने तनखा लवाई थी कि दो पिंड मैं दरबार साहब ना कीते पर तुसी चाननी नू प्रवान कर लवो। पर अज दे आगुआ वल तको, ओदे घर जे पुत्र दा विआह है कीमती सेहरा तैयार हुंदा है, ते सेहरे नू तक के कहिंदा नहीं पुत्र दे दर ते नहीं, ए मेरे गुरु राम दास दे घर भी चंगा लगदा है, ते अज दे आगुआ नू तको ओ कहिंदे ने गुरु रामदास तेरे घर दे छब्बे तां साडे ड्राइंग रूम भी चंगे लगदे। इन्हां दी सोच विच ओदी सोच विच अंतर किन्ना है, ओने जे सेर चंगा सेहरा मिलिया है तां चुक लिया है, जे चाननी मिली तां चुक लिया है, जे कोई कीमती मोती मिले तां चुक लिया है। ते मैं अर्ज कीती सी चार ओने दरवाजे सोने दे लवाए, मैं वैसे अर्ज कर चुका पर अज संगत विच होर नवे सिंह आए ने, पहला दरवाजा जेड़ा दर्शनी ड्यूटी वाला है ओ जलाओ वाले दिन ही केवल सजदे ने, सारा साल नहीं जदो जलाओ सजदा है, पहला दरवाजा रणजीत सिंह ने भेट कीता है, एक दरवाजा जेड़ा रणजीत सिंह दी राणी महाराजा खड़क सिंह दी मां ने भेट कीता है सोने दा, तीसरा दरवाजा महाराजा खड़क सिंह ने भेट कीता है, ते चौथा दरवाजा करम कवर नौ निहाल सिंह दी माता ने भेट कीता है, महाराजा खड़क सिंह दी घरवाली ने भेट कीता है। किन्ना कु गुरु नूं समर्पित सी, ओदे जीवन नूं पढ़ने आ, ते जे किते कोई गुरमुख प्यारा मिलना घंटिया बद्दी बैठ के उन्हें गुरबाणी दा पाठ सुनना, ते जे किते सामने दुश्मन ने आउणा ते परवाह फिर भी नहीं करनी, परजा नाल ओदा किन्ना कु प्यार है। मैं एक दो ट्यूका दे देना, कवर नौ निहाल सिंह दा आनंद कारज, सरदार शाम सिंह अटारी दी लड़की बीबी नानकी नाल महाराजा खड़क सिंह दा जिहड़ा पुत्र कवर नौ निहाल ते शेरे पंजाब दा पोता है, ए व्याह आ गया, उस व्याह दी भी मिसाल दुनिया विच कोई नहीं मिलदी। अटारी ढुकण गए ने, जंज लैके गए ने, ते उत्थे रणजीत सिंह ने एक ऐलान कीता, देखो परजा नाल ओहदा नेह कीए, जी सेती जिन्ने जिन्ने घर दे जी ने हर एक नूं सोने दी मोहर दित्ती जाए, रुपये दिते जान, जदों सारे वंड दिते कहिंदे एक भिखारी आ गया ओने सिर ते भांडा चुकिया, मैं इहदे परजा वाला प्यार अर्ज करना पिया, सिर ते भांडा चुकिया ते कहिंदा पुछदा अहलकारां नूं हर एक नूं वंड के जी सेती मोहर दे दित्ती, ते अगो भिखारी बोल के कहिंदा नहीं रणजीत सिंह मेरे जी सेती मोहरां नहीं मिलियां। कहन लगा हद हो गई तेरे जी सेती क्यों नहीं मिलियां, ओने भांडा रख के ना थले उतो चपनी चौंक दिती ते विच कक्कियां कीड़ियां छोटियां भरियां पईयां सन। कहन लगा सारे मेरे जी ने मेनू गिण के जी सेती मोर दियो, ते दयालु राजा हस पिया कहन लगा सजना एक काम तू कर लै, जिन्नी जी ने गिण तू नहीं
1: ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗਿਣ ਤੂੰ ਲੈ,

गुरु अर्जुन विगनन के नाशक विगनन के नाशक श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी

माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदग बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह

उस वक्त मना रहे हैं सब कहेंगे जी सरगुरु सचे पातशाह जी महाराज अंतर जामी श्री गुरु रामदास साहब जी का जो अवतार होया सब संतों को बधाई होवे सवा पहर में अमृत वेले किशोर कुमार प्रगट होए उस वे बाद भाई संतोष सिंह साहब ने लिखा है कि महाराज के प्रगट होने की इन्नी खुशी हुई वरुण देवता ने प्रगट करके अपने जल के रूप में बुद्धियां नदियां उस वक्त बागियां सवा पैर के करके बुद्धियां सारिया नदियां दुधी बागियां उस वक्त ऐसा ऐसी खुशी वरुण देवता ने मनाना किसी गुरु रामदास साहब के प्रगट होने से देवतियां ने मिल करके चंदन कसा के कल कल बिछले फूलों दिया मारा गुंद गुंद के चूना मंडी जो लाहौर के अंदर गुरु महाराज हो जन्म स्थान है जो श्री हरिमंदर साहब की शक्ल के नाल स्थान बनिया होया सुंदर बड़ा सुंदर जड़ती है उस मंदिर के उत्ते महाराज साहब के अवतार धारण की खुशी का संत संगत जी चरण कसा के फुल कसा के फुल दिया माला गुंद के उस मंदिर के उत्ते अर्पियां सुखे खुशी के शंख बजाओ उत्थे देवते सारे देवतों ने मिल के गुरु महाराज साहब के अवतार धारण की खुशी बूहे ने अगे आके महाराज का जस गाया कीर्तन गाया क्यों राग रचाया आनंद जगत राग राग ने मंगल गाया सारे संसार में इस प्रकार आनंद प्रगट होया रागा रागनिया च मिल मिल के देवतिया ने गुरु साहब का जस उच्चारण किया क्यों सवा पार दे करके अज अमृत वेले महाराज साहब आपकी वे पिता का शुभ नाम जेडे कई जन्मों को ला के तपस्या करते सन बाबा हरवाह जी नाम सी उन्होंने तपस्या इच्छा सी कि महाराज मेरे घर में आक आप अंतर्यामी बालक रूप में प्रगट हो माया दया कौर जी जो सतगुरों की माता सी ये भी नाल तपस्या कर रहे उन्होंने बहुत सारे जन्म गुजर गए सन इस जन्म में अंतर्यामी ने उन्हें इच्छा पूरी करके सतगुरु रामदास रूप अंदर प्रगट हो सके पातशाह इस प्रकार साहब संगत जी अज गुरपुरब है जिस दिन गुरु रामदास साहब जी ने अवतार धारण किया है अज श्री अमृतसर साहब इस गुरपुरब के नाई बड़ा चंगिया कला के नाल मनाया जा रहा है बेअंत संत कीर्तन दिया चौकिया बड़े बड़े रागी मिल करके बेअंत संतों के इकट्ठे हो के सतगुरु सच्चे पातशाह के श्री दरबार साहब के अंदर गुरु के बाग के अंदर दीवार सजे हुए हैं तरह तरह के अपने जस के फुल गुरु महाराज साहब के पास शब्दों के राही कीर्तन के राही अनेक तरह भेटा कर रहे हैं सभी उन्होंने प्यारियों अपना सुखी सुख प्यार बख्शे अब आप संगत इतने महाराज के सतसंग दरबार से गुरुगुरु को मना रहे हैं इन्होंने संत ग्रंथ साहब संगत जी महाराज जी इस चर्च बड़ियाई है जो कही नहीं जाती आप हर रोज समाज में ही लीन रहा कर दे कोई कारो विहार घट लाया कर दे आप जी भी थोड़ी जी जब वड्डी उम्र हुई 13-14 साल की उम्र वड्डी होगी उस वक्त पिता ने एक दिन कहा कि तुम कोई घर का कारो विहार करया करो बाकी ये सारे जिन्हें लोग होंगे वो लड़के थोड़ी उम्र के सारे घर के कारो विहार कर दे तुम कोई कार विहार क्यों नहीं कर रहे हो आप जी पिता के हरदास के अनुसार होते जो मारा आप आज्ञा करो माता जी ने उस वक्त रात में कहे प्यो के उबाल के दे दिते चंगेर भर के घूमिया भी आपने दे दिती गई कि लो जिस तरह होर बच्चे बेचने बाजार में जाके बेचना करो आप जी माता पिता की आज्ञा लेके चंगेर चक लिया है चके लिया के एक बाजार के कोने पर खड़ गए जिन्हें होर बच्चे फोका दिंदे फिरते हैं के पा चने इन पा चने अब सेने इन कुछ नहीं बोलते चुप किते खड़ोते उन्होंने चुन संगत महाराज साहब जी श्री गुरु अमरदास साहब जी के पास में जा रही है श्री गोबिंदवाल साहब न संगत न वेख के आप खड़े दर्शन कर रहे हैं एक साधु ने कहा कि महाराज मैनू चने दो आप

सूबेदारियां का लालच नहीं करता, तेन अहदेदारियां का लालच नहीं है, तो फिर तू यू कर। खालसा तो तेन बहुत प्यारा है ना, उन्हें आख्या हां खालसे नाल तो मैनू बहुत प्यार है। कह लगे फिर तू यू कर, तू मैनू छड दे, तू मैनू माफ कर दे। लोगों ने कहना भी देख खड़क सिंह किड्डा चंगा सिख है, किड्डी खालसे की शान वधी है, पर जेड़ा बंदा उन्हें कैदी बनाया सी वह बिना किसी शर्त तो रिहा कर दिता। फिर उस वेले करत सिंह ने जवाब दिता, कह लगे सजना यह भी गल तेरी सानू भाई नहीं। उन्हें पूछा क्यों, कह लगे इसलिए नहीं भाई, पर सिख कदे अपनी वडियाई नहीं चाहता, उते चाहता वडियाई होवे जदों मेरे गुरु दी होवे। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ ना जाने मेरा। टाइम मेरे को बहुत थोड़ा, मैं अगली गल करना चाहना। 1764 विच अहमद शाह अबदाली ए सारियां गल्लां सुन के तरथली दियां, सिखां दे नाल सिद्धा टक्कर लैण वास्ते आ गया, ते उन्हें आके ऐलान कर दिता भी मैं सिखां दे नाल सिद्धी टक्कर लेनी है। रब दा सबब बनिया, उन्हां दिनां विच खालसा अपनियां सरगर्मियां च लग्गिया होया सी, कोई किधरे बड़ी दूर तक इन्हां दा खलारा खिलर गया सी। उन्हें आके सब तो पहला हरिमंदर साहिब दे कोल आ गया। हरिमंदर साहब के कोल आया, याद रखो जी मैं बेनती करा, उदो केवल ते केवल 30 सिख सन हरिमंदर साहब की सेवा संभाल ली, केवल 30। उन्हां विचों मुखिया गुरबख सिंह, शहीद गुरबख सिंह, ते 30 सिखां दे विचों ओ जिहड़ा अबदाली फौज लेके आया, 30,000 की फौज लेके अमृतसर साहब ते चढ़ाई करदा है, ते सिखां दे नाल 30 सिखां दे नाल गल करदा है। पहला उस स्नेहा भेजदा भी देखो तुसी 30 हो, यह मैनू पूर्ण भरोसा भी तुसी जित नहीं सकते, क्योंकि 30,000 के मुकाबले च की ने। तो तुसी यूं करो, हथ खड़े करके आ जाओ, जिवें मेरा चाचा तुसी कैदी बनाया सी ना, मैं उस दिन को थोड़े दिन तुहानू कैदी बनाना चाहना। गुरु के सिखां ने आख्या सजना यह तो साडी जिंदगी च ही नहीं है ना, हथ खड़े करके आना। वैसे पिछले दे समय च इतिहास दागी भी कर लिया होया कुछ लोगों ने, इस गल च कोई शक भी नहीं है, हथ खड़े करके भी आ गए सन। पर उदो उन्होंने बच्चे ने आख्या भी साडी जिंदगी च ही नहीं है, असी हथ खड़े करके आ जाइए, असी शहादत देवांगे। की होया जे 30 है, खैर मैं गल नेड़े रखा, उहदी 30,000 फौज ने हल्ला किया, 30 गुरु के सिखा ने अपनियां शहादतां दित्तियां। गुरबख सिंह ने कोई बेनती की, कहन लगे सजना तू रज के गोलियां चला, पर यह गल चेता रखी मेरी किसी पिट विच गोली ना मारी, जिन्नियां गोलियां मारियां छाती च मारी, क्योंकि असी 30 दे 30 तीहां विचों किसी ने नहीं बचना। ते कल कोई ए ना देख के कवे भी सिख भज गए होणगे ते उहदी पिट विच गोली बजी होई है, साडे विचों गवाही देण लई किसी ने नहीं बचना। जिन्हां ने गोलियां मारनियां तू हिक विच गोलियां मारी, इस तो बिना गोलियां ना मारी, मार रज के असी ते ना लड़ांगे। समय ने अपना पन मुका लिया, मैं वगैरह नहीं करनी चाहता इस